श्रीदक्षिणाभिमुख सन्मुख सर्ववन्द्य मायांधकार परिहार विनूत्न विन्ध्य भक्ताश्च ते चरण पद्म दिदृक्ष मोहि कोटप्पकोंड जगदीश्वर सुप्रभातम्। सर्वेश भूमि पवनाग्नि जलांतरिक्ष लिंग स्वरूप हृदयांबुज।

त्रिकूटगिरिशीर्षतले सुरक्तौ कोटप्पदेव चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीनिर्विकल्पक समाधि सुसक्त योगी चित्तारविन्दसु समुज्ज्वल सौम्य सूर्यौ पाप प्रमर्दन परौ प्रणताभिरामौ कूटेश्वरस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये नित्याभिषेक जल निर्मल चिद्विलासौ श्री बिल्वपत्र विहितौ हरित प्रकाशौ भस्म प्रभावि भवरंजित भाग्य दीपौ कूटेश्वरस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये संपूर्ण सत्य शिव सुंदर सार्वभौमौ विश्वोत्सवौ विकृत कर्म